0: दादर निमन्त्रणा श्री दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम नयामिल देवी स्थानमा बर्मलिन स्वामी विवेकानन्द सरस्वतीज्यूको षोडशी भण्डारा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा सपरिवार उपस्थित भई प्रसाद ग्रहण गरिदिनु हुन सादर निमन्त्रणा गर्दछौ। कार्यक्रम तालिका रुद्राभिषेक बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म, स्मृति सभा बिहान 8 बजेदेखि 10:45 बजेसम्म, काव्य विमोचन बिहान 10:45 बजेदेखि 11 बजेसम्म, सन्त पूजन बिहान 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म, गुरु स्मृति भण्डारा बिहान 11:30 बजेदेखि। श्री दुर्गा वैद्य परमानन्द सन्यास आश्रम नयामिल देवी स्थान, मिति यही जेठ 24 गते आइतबार, स्थान श्री दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम प्रांगण।
1: यति बेला बिहानको 9 बजे हो।
2: हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन, समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। यो हो थाहा संचार नेटवर्क, समयको आवाज, समयको आवाज।

क्यों घास वन में आगो लगो जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो वन जंगल खा वन में जीव जंतु ने सारे पीरा मं फागुन देखि जेठ समय आगो लगने डर आपनो

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803-64460।
1: आग लागी हुन नदिन सधैं चनाखो बनाऊ। खाना पकाई सकेपछि आगो ग्यास चुलो स्टोभ वा हिटर निभाऊ। सिलिन्डरको रेगुलेटर पाइप वा चुलोबाट ग्यास लिक भए नभएको यकिन गरौ। ग्यासको गन्ध आए बेवास्ता नगरौ। सलाई लाइटर बाल बालिकाले भेट्याउने ठाउँमा नराखौ। दाउरा बालेर खाना पकाइसकेपछि पानी छ्यापेर आगो निभाऊ। चुरोट तमाखु चिलिम सुल्पा नखाऊ। खाएमा आगो राम्ररी निभाऊ। बिजुलीका तार प्लग स्विच वा वायरिङ ठिक अवस्थामा भए नभएको जाँच गरौ। घर बस्ती नजिकै पोखरी ट्याङ्की वा अन्य कुनै तरिकाले पानीको जोहो गरिराखौ। आग लागिजन्य विपदबाट बस्न चनाखो बनाऊ। हावाहुरीबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी एवं सतर्कता अपनाऊ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका दिउखुरी नेपाल।
2: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बच भी सर्वोत्तम उपाय हुए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के ना देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए।
3: अनुरोध है लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी नेपाल।
4: एसईई को रिजल्ट कहिले आउला भन्दा भन्दै 11 कक्षामा कहाँ भर्ना हुने हो भन्ने पो टेन्सन भयो बा। जान्ने बुझ्नेहरुको कुरा सुन्दा शंकरनगर दुर्गादत्त माविमै पढ्नु पर्छ भन्छन्। खै के हो
5: आमै नि त्यति पनि थाहा छैन ल सुन त्यसो भए।
6: नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सामुदायिक मावि भएकोले
5: माध्यमिक तहमा जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरिरहेकोले
6: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुने भएकोले
5: उत्पादित जनशक्ति हरेक क्षेत्रमा सफल भएकोले
6: अंग्रेजी र नेपाली दुवै अलग अलग कक्षा को व्यवस्था होने भएकोले
7: शिक्षा अंतर्गत मेजर विषय तथा व्यवस्थापन में होटल मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस र फाइनेंस जस्ता विषय पठन पाठन होने भएकोले
6: ख्याति प्राप्त अनुभवी शिक्षक प्राध्यापक पठन पाठन होने भएकोले
5: सुविधा संपन्न भवन तथा पर्याप्त खेल मैदान को व्यवस्था भएकोले
6: नेपाल सरकार का संपूर्ण छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध होने भएकोले
5: बस को सुविधा समेत भएकोले
6: स्नातक तर्फ शंकर नगर बहुमुखी कैंपस समेत सँगै रहेकोले
8: म त अब ढुक्क भए बरु तपाईँका पनि छोरा छोरीलाई लैहाल्नुहोस् है भर्ना गर्न शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा।
6: सम्पर्क शंकरनगर दुर्गादत्त माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 2 शंकरनगर रूपन्देही एन इन्स्टिट्युसन अफ क्वालिटी एजुकेशन।
9: कति धेरै भिड हो मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल मलाई कसले छुँदैछ यताउता आँखा भनि टेक्दिन कसलाई आरोप लगाउनु र अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ लौ न सहयोग गर्नुहोस्।
10: ओए बहिनीलाई के गरेको हो त मान्छे नै रहेनछस्।
11: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिऊ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौ।
12: डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: यति बेला रातिको 8 बज्यो।
2: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज।

0: होइन
1: पुर्खे बा, किन के भयो र?
0: बाह्र चौरास घुमे
1: बिरामी भएर धेरै मेडिकल धाउँदा नि सन्चो नभएर रहेछ क्या। एकपटक यिनलाई मणिग्रामको क्रिम्सन अस्पतालमा लैजान पर्यो। 24 घण्टा इमर्जेन्सी आईसीयू प्रसूति ईसीजी एक्सरे सिटी स्क्यान फार्मेसी र एम्बुलेन्स सेवा सहित सम्पूर्ण खालका शारीरिक मानसिक रोगहरूको गुणस्तरीय र सफल उपचार परामर्श र औषधिका लागि क्रिम्सन अस्पताल। होइन पुर्खे बा, फेरि दौडिँदै कता हो?
0: ए क्रिम्सनमा गएको सब ठिक ठाक। अब त पुर्खे बा पनि हिँड्छ मर्निङ वाक।
1: सम्पर्क क्रिम्सन अस्पताल तिरोत्तमा छ मणिग्राम रूपन्देही। फोन 071-562-744 562-745।
2: एक दिन जाने हो संसार छोडेर।
3: सादर निमन्त्रणा, श्री दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम नयाँ मिल देवी स्थानमा बर्मलिन स्वामी विवेकानन्द सरस्वती ज्यूको 16 भण्डारा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा सपरिवार उपस्थित भई प्रसाद ग्रहण गरिदिनु हुन सादर निमन्त्रणा गर्दछौ। कार्यक्रम तालिका रुद्राभिषेक बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म, स्मृति सभा बिहान 8 बजेदेखि 10:45 बजेसम्म, काव्य विमोचन बिहान 10:45 बजेदेखि 11 बजेसम्म, सन्त पूजन बिहान 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म, गुरु स्मृति भण्डारा बिहान 11:30 बजेदेखि। श्री दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम नयाँ मिल देवी स्थान, मिति यही जेठ 24 गते आइतबार। स्थान श्री दुर्गा वैदिक परमानन्द सन्यास आश्रम प्रांगण।
4: सौजी क्युआर भयो है?
5: ए बगनुस् त, मेसेज आएको छैन
6: घरी, एसएमएस आएन।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज शान्तिको आवाज।